0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी गौर किया है, महसूस किया है, इनफैक्ट अल्फाज देने की कोशिश की है बारिश की बूंदों, बिजली और बादलों के उस सीन को। अच्छा बताएं कैसा लगता है खिड़की से बारिश की बूंदें देखना, अपने आप को उन बूंदों की नजर करना, जब बिजली जोर से कड़क कर अपने गुस्से का इजहार करती है और जवाब में बादल हंस कर उसे मनाता है। इन एहसास में जीना कैसा लगता है, बारिश के संग आंख मिचोली खेलना कैसा लगता है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अच्छा आपको बताऊं कि रिश्ते बनाने और तोड़ने में आपकी जुबान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे घर के पास एक लेडी रहती हैं जो हमेशा कहा करती थी कि जुबान शिरीं मुल्क गिरी। एग्जैक्टली नहीं पता बट शायद इसका मतलब ये है कि अगर जुबान अच्छी हो तो मुल्क तक फतेह किया जा सकता है। यकीनन अगर आपका बिहेवियर एटीट्यूड और बात करते हुए अल्फाज अच्छे होंगे तो जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उनके साथ तो जस्टिस होगा ही, नए रिश्ते खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते जाएंगे।

छोटी छोटी बात पर हम लोग अक्सर अपसेट हो जाते हैं। यकीनन खुशी का मतलब सिर्फ स्माइल करना और हंसना नहीं है। खुशी दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जिसे एक्चुअली हम बाहरी दुनिया में तलाशते फिरते हैं और ये इतनी क्लेवर है कि छुप कर बैठी है हमारे मन के एक छोटे से कोने में। ज्यादा पैसा, बड़ा सा घर, लग्जूरियस कार, अ न्यू एंटी डिप्रेसेंट, प्लास्टिक सर्जरी, फ्लैट स्टमक, ऑब्वियसली ऑल दीज टू कैन नॉट गारंटी हैप्पीनेस। फिर कहाँ ढूंढे इसे। चले खुशी की तलाश जारी रखते हुए पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी अंध करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चिंदिया फल पाया।

दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच बखाना सोरठ महला पंजवां ऐथै उथै रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे घट घट शब्द सुभाखे गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सरहण सास सास संभाली पूर्ण सबनी थाई रहाओ आप सहाई होवा सच्चे दा सच्चा टोवा तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरणाई सोरठ महला पंजवां सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पावै बिरथी आस ना जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पद दाता सोई संत गुण गावै प्रेम भगत ता का मन लीना पार ब्रह्मन पावै आठ पहरो हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करतै संत साध पए साथी कर गहली ने सरबस दीने आपै आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवां गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रे निशारी इस आगै को ना टिकै बेकारी गुरपूरे एह गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उदरै सगले कोटा रहाओ संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोरठ महला पंजवां गुरपूरै पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्हीं जाती रहाओ गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावै पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोरठ महला पंजवां गुरपूरा आरा दे कारज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी सोरठ महला पंजवां भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै अपने काज कहो क्यों अलकाई है जे सिमरन दर गै मुखी उजल सदा सदा सुख पाई है रहाओ ज्यों कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै ज्यों माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै सोरठ महला पंजवां सुख

जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कह पाण, दास बाणी ब्रह्म खाण, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपुरै लै तारे, संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपुरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवा, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुरपुरे की वडियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान।

कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे गुर पूरै पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाए सुख सांझ फिर आए नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए जन सगले रोग मिटाए सोरठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकी सरणी पाई है दर्शन पेड़त होत आनंदा दुख गया हर गाई है हर रस पीवो पाई नाम जपो नामो आराधो गुरपुरे की सरनाई रहाओ तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई सोरठ महला पंजवां करण करावन हरे अंतर जामी जन अपने की रखै जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने।

वेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहे।

92.7 FM CKJS रेडियो धमाल दे नाल जुड़ चुके सारे ही श्रोतियां नूं मेरे वल्लों जाने की मनदीप सिंह बराड़ वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल सलाम नमस्ते। एक बार फिर दोस्तों तुहाड़ी सेवा दे विच लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम रेडियो धमाल 92.7 FM नूं 3 बजे तक तुसीं ट्यून इन करके रखना गा ते टिकटॉक दे साडे अकाउंट नूं भी तुसीं जॉइन करो और अज दे लाइव प्रोग्राम नूं तुसीं सुन भी सकते हो ते देख भी सकते हो। सो तुहाड़ी बड़ी मेहरबानी होवेगी। सो अज स्पैशल तुहानूं वधाइयां देंगे जी, रखड़ी दा दिन हैगा। सो सब नूं रखड़ी दे इस शुभ दिन दीआं बहुत बहुत मुबारकां। और फ्राइडे हैगा दोस्तों, तुहानू पता ही है फ्राइडे का प्रोग्राम किस मोड दे विच हुंदा गा और किस थीम दे विच हुंदा गा तुसी सब जानते हो और उड़ीक करते हो कि फ्राइडे नू किदन गाने गुने सुन गए पूरी उच्ची आवाज करके अपनी गड्डी दे विच। अज फिर कोई कसर रह ना जावे, मसा फ्राइडे आउंदा देख लो ते अज फिर तुसी योगदान पायो प्रोग्राम दे विच। स्टूडियो दे नंबर तुहानू पता ही है, मैं दोबारा भी दस दिना गा 204-780-8881 204-780-8181। अज मौसम भी बड़ा कमाल दा गा, 28 अगस्त दा अज दा दिन है दोस्तों और 2026 साल चलता गा ते विनीपैग च रेडियो धमाल चलता गा ते 23 डिग्री सैलसीयस इस वक्त विनीपैग दे विच तापमान हैगा। साउथ वाली साइड तो निघी हवा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के नाल आ रही है और 25 डिग्री सैलसीयस अज दे दिन दा वध तो वध तापमान होगा ते अज की रात नूं मीह पैण दे चांस आ पर बहुते नहीं है। 15 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर होगा रात नूं ते 30% चांस मीह आउण दे हैगे आ, कोई वड्डी गल नहीं। ते कल नूं यानी कि शनिवार दा दिन 29 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर होगा और यह बोनस के दिन ने, तुसी इन्हां दिनों नूं इंजॉय करो अपनी फैमिली दे नाल, किते बाहर अंदर घूमन फिरन का प्रोग्राम बना रहे हो तो आई थिंक वीकेंड भी हैगा ते शनिवार दा दिन आ ते टैंपरेचर भी 29 डिग्री सैलसीयस। बीच बूच ते नहाउणा गा, बी केयरफुल, नहाओ हसो खेडो ते तुसी कल नूं गर्मी वाला दिन इंजॉय कर सकते हो। एक वधिया दिन होवेगा, प्री प्लैन करो अज ही ते पहुँचो फिर आपो अपनी मंजिलों के उत्ते पौणियां दे विच परौठे बन के हैं। तो इस तो बिना ऐतवार नूं भी वधिया दिन, 28 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर ऐतवार नूं होवेगा ते इस तो बिना सूरज देवता जी अज 6:37 आए ते 8:21 चले जाएंगे। तो उधर गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहब विखे इस वक्त का तापमान 31 डिग्री सैलसीयस आ ते फील बहुत हो रहा, फील 41 के नेड़े हो जाता।